गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो पर आरजे किताब के साथ, और मैं हाजिर हूँ शो लेकर नॉनस्टॉप गपशप। जी हाँ दोस्तों, नॉनस्टॉप गपशप मैं रहने वाला हूँ 11 बजे तक आपके साथ, और आ चुका हूँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में, आपका दोस्त आरजे अंकित है। और दोस्तों, जब भी हम आते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, करते हैं एक दूसरे से ढेर सारी बातें, ढेर सारी गपशप, और गपशप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस एक इजी सी चीज करनी पड़ती है, वो है अपना मोबाइल फोन उठाना और डायल कर देना हमारा नंबर। हमारा फोन नंबर है 2221314। यहाँ दोस्तों नंबर नोट कर लीजिए, 2221314। और आप सोच रहे होंगे अंकित ने तो नंबर नोट करा दिया, लेकिन आज किस बारे में एफएम रेनबो पे अड्डा बैठने वाला है, गपशप होने वाली है। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों से फीफा वर्ल्ड कप के बारे में की थी बातचीत, की थी ना, आप लोग आए थे हमारे साथ हमारे फोन नंबर पर, अपनी जो फेवरेट टीम है उस बारे में आपने हमसे की थी बातें। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, जब भी आप रात को फीफा वर्ल्ड कप मैच देखने बैठ रहे, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, या फिर अकेले आप जब बैठ रहे हैं टीवी पे या मोबाइल में, जहां भी आप देख रहे हैं, तो उस समय हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो दोस्तों भूख तो जरूर लगती है। जी हाँ दोस्तों, आदमी का शरीर ऐसा ही है, पेट ऐसा ही है कि जब मन चाहो खा लो और इंजॉय करो। तो मैं बस आप लोगों से जानना चाहूंगा, जब भी आप रात को मैच देख रहे हैं और अपनी फेवरेट टीम को चीयर कर रहे हैं, उस समय जब आपको भूख लगती है तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? घर से ही कुछ खा लेते हैं, घर में कुछ बना लेते हैं, या फिर आप करते हैं बाहर से ऑर्डर? बस दोस्तों, ये ख्याल रखिएगा, जब भी आप आए और अपनी फेवरेट आइटम्स के बारे में बात करें, अपने फूड के बारे में बात करें, बस किसी ब्रांड का नाम मत मेंशन करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन आते हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, और तब तक स्टार्ट करते हैं हमारा शो इस वाले ट्रैक के साथ।

फिल्म कॉकटेल 2 से दोस्तों आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह, आकाशा और मधुबंती बाक्षी की आवाज में। ट्रैक प्रीतम चक्रवर्ती का, संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। और दोस्तों एक सर्वे में मालूम पड़ा है कि कोलकाता के लोग जब अपनी पसंदीदा विश्व कप टीम को चीयर करने के लिए स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो सबसे ज्यादा पिज्जा, बर्गर और ब्राउनी सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।

फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से आप सुन रहे थे स्टेविन बिन जोनीता गांधी की आवाज में, ट्रैक व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स का, कंपोजिशन लिरिसिस्ट वायु। और दोस्तों जो सर्वाधिक बिकने वाले कॉम्बो है वो है पिज्जा और फ्राइड चिकन बकेट, साथ में दोस्तों ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में फ्राइड और केचप के साथ फ्राइड चिकन बर्गर भी।

फिल्म पति पत्नी और वो दोस्त से दोस्त आप सुन रहे थे आदित्य रिखारी श्रेया घोषाल की आवाज में, ट्रैक रोचक कोहली का, कंपोजिशन और कुमार के बोल। दोस्तों 10:13 AM हो चुका है, आरजे अंकित आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा नॉनस्टॉप गपशप, और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट्स ऑन किया उन्हें बता दो दोस्तों आज नॉनस्टॉप गपशप में मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं कि जब आप रात को टीवी पे या अपने फोन पे फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं और अपनी फेवरेट टीम को चीयर करते हैं उत्साह से अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली के साथ, तो उस समय जब आपको भूख लगती है तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? क्या वो आप घर पे कुछ ढूंढ लेते हैं या घर पे कुछ बना लेते हैं या फिर आप करते हैं बाहर से कुछ ऑर्डर खाने के लिए? और अपनी बातें बताने के लिए आइए हमसे बातें शेयर करिए 2221313 41 पर, ये है हमारा फ़ोन नंबर, यहाँ डायल करिए और करेंगे हम ढेर सारी बातें एक दूसरे से।

फिल्म पीके से दोस्तों सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक शांतनु मोहित्रा का कंपोजिशन और अमिताभ वर्मा के बोल। और दोस्तों रात 12:30 से 1:30 बजे के बीच सबसे अधिक ऑर्डर आते हैं और ऑर्डर की शेड्यूलिंग रात 9 बजे से शुरू हो जाती है। जी हाँ, ये फूड ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। Got the zoo.

0: कभी गमी कभी खुशी जिंदगी का है यही। समय आएगा समय जाएगा, किसे के रोके ना रुक पाएगा।
1: थैंक यू पायल, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और बहुत अच्छा गाना था, थैंक यू आने के लिए।

फिल्म बैंग बैंग से दोस्तों हर्षदीप कौर और बिनी दयाल लेकर आए थे ये ट्रैक विशाल शेखर का कंपोजिशन अनविदा दत्त के बोल। दोस्तों 10:29 AM हो चुका है आरजे अंकित आपके साथ और शो चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। और दोस्तों आज नॉन स्टॉप गपशप में मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, जब भी आप अपनी फेवरेट टीम को चीयर कर रहे हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में रात के समय, जी हाँ दोस्तों क्योंकि रात के समय ये मैचेस हो रहे हैं, तो आप जब चीयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली के साथ तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी भूख तो लग ही होगी। और जब आपको भूख लग रही है तो आप उस समय क्या खाना पसंद कर रहे हैं? क्या आपके घर में जो बना हुआ वही खा ले रहे हैं या फिर आप कुछ स्पेशल बना रहे हैं मैच के लिए या फिर बाहर से आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं? और जो भी आप कर रहे हैं आइए हमसे शेयर करिए, हमारा फ़ोन नंबर है 2221313341। और दोस्तों आप हमारा ये कार्यक्रम 107 FM रेनबो पर तो सुन ही रहे हैं लेकिन आप न्यूज़ ऑन एयर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप पर भी हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं।

फिल्म गुंडे से दोस्तों आप सुन रहे थे विषाद अदलानी के नीति मोहन और बप्पी लहरी की आवाज में। ये ट्रैक सुहाली सेन का कंपोजिशन इरशाद कामिल के बोल। कई लोग रात 10 से 10:30 बजे के बीच की ऑर्डर शाम 6 बजे तक ही बुक करा लेते हैं, खासकर उन दिनों जब अर्जेंटीना और ब्राजील जैसी लोकप्रिय टीम खेल रही होती है। ट्रफल ब्राउनी बॉक्स और न्यूटेला ब्राउनी बॉक्स बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इन्हें आसानी से शेयर किया जाता है, खाया जाता है और ये किसी भी उत्सव के लिए पर्याप्त स्वादिष्ट होते हैं।

फिल्म ये जवानी है दीवानी से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर लेकर आए थे ये ट्रैक प्रीतम का कंबोज अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। 10:41 AM हो चुका दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप। और आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, जब भी आप फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपनी फेवरेट टीम को चीयर कर रहे हैं तो उस समय आप क्या खाना पसंद कर रहे हैं? क्या घर का कुछ बना हुआ खा ले रहे हैं या फिर कर रहे हैं बाहर से कुछ ऑर्डर? और अपनी बातें करने के लिए हमसे आप बात कर सकते हैं 2213-1341 पर, यहाँ डायल करिए और करेंगे हम एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें।

फिल्म रेस टू से के शेफाली और हनी सिंह लेकर आए थे ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन और प्रशांत इंगोले के बोल। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो ऑर्डर किया जा रहा है अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में वो है पिज्जा। पिज्जा नंबर वन पे है, चिकन पेपरोनी और स्मोक चिकन सॉसेस पिज्जा चीज क्रस के साथ हमेशा से लोगों का पसंदीदा रहा है। रात 10 बजे के बाद ऑर्डर में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कई सारे जो पिज्जा आउटलेट है आमतौर पर आधी रात के बाद नहीं खुलते, लेकिन बड़े मैचों के दौरान शाम के समय सबसे व्यस्त रहता है। एक पिज्जा आउटलेट के कर्मचारी का कहना है कि रात करीब 1 बजे चिकन बारबेक्यू पिज्जा और लोडेड वेज पिज्जा के ऑर्डर में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, जिन्हें अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ऑर्डर किया जाता है।

फिल्म स्पेशल 26 से दोस्तों आप सुन रहे थे कीर्ति सागाथिया की आवाज में, यह गीत एमएम क्रीम का संगीत और इरशाद कामिल के बोल। और दोस्तों टेक अवे काउंटर आमतौर पर आधी रात तक बंद हो जाते हैं, लेकिन शहर के कई क्लाउड किचन देर रात के मैच वाले दिनों में ऑनलाइन ऑर्डर का पूरा फायदा उठाने के लिए सुबह 3 बजे तक खुले रहते हैं। फ्रेंच फ्राइज हो या वेजेज आलू, कोलकाता में हमेशा से ही लोकप्रिय रहे। वहीं चिकन विंग्स और नगेट जैसे अन्य व्यंजन, साथ ही क्लासिक चिकन काफी पॉपुलर है। इन व्यंजनों का आनंद टीवी के सामने आराम से लिया जा सकता है और इसमें आपके हाथ और कपड़े भी गंदे नहीं होते।

फिल्म एबीसीडी से दोस्तों आप सुन रहे थे हार्डकोर की आवाज में ट्रैक सचिन जिगर का कमिश्नर मयूर पूरे के बोल। बढ़ेंगे दोस्तों हमारे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ और इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त अंकित लेले का इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से बहुत जल्द इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, इंजॉय करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, जी हाँ, लेकर कार्यक्रम 3 का तड़का सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, लाइफ में जब थोड़ा सा मिर्च मसाला ना हो तब तक जीने का मजा नहीं आता, और इसी मजा को दो गुना नहीं सीधा 3 गुना करने मैं आ गई हूँ। जी हाँ, आपके अपने चहेते शो में, जहाँ होंगी 3 गुनी बातें, 3 गुनी मस्ती और एंटरटेनमेंट का वो जबरदस्त फ्लेवर जो आपके दिन को बना देगा, जी हाँ बिल्कुल एकदम नया सा। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि शुरू हो

चुका है कार्यक्रम तीन का तड़का। वैसे मैं तड़का लगा चुकी हूँ इस कार्यक्रम की शुरुआत में, जी हाँ, राहत फतेह अली खान की आवाज से। तो चलिए दोस्तों, बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के साथ हूँ, जी हाँ, शाम के ठीक 4 बजे तक। और दोस्तों, बातों या गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है, यानी कि इंटरटेनमेंट का जो ये सफ़र है, बिल्कुल कार्यक्रम तीन का तड़का, जहाँ मैं लेकर आई हूँ ढेर सारी बातें, ढेर सारी मस्ती और हाँ, ढेर सारे गीत भी आप सभी के लिए। तो बस दोस्तों, थिल थाम कर बैठिए और हाँ, अपने कानों में ईयरफोन या फिर अगर आप रेडियो से सुन रहे हैं तो बिल्कुल साउंड ऑन करके अच्छे से बैठिए और चलते हैं अगले गीत की ओर।

तो दोस्तों आप एक गीत सुन रहे थे के और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म खट्टा बेठा से, और इस गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत से पिरोया था प्रीतम ने। फिलहाल दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 3:15 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर आप सभी के लिए है 3 गुना फ्लेवर, जी हाँ, बातें, मस्ती और गीतों का जबरदस्त धमाका। वैसे दोस्तों बता दूं कि जिस प्रकार दाल में जीरे का जब तड़का तो आपने बहुत चखा होगा, लेकिन जब कानों में लगने वाले बातों का ऐसा जबरदस्त तड़का जिसकी खुशबू से, यानी कि जिसकी गीतों की खुशबू से, आवाज से आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, तो कैसा लगता है, है ना? तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इंटरटेनमेंट की जो अंतहीन बौछार है, जी हाँ, आज के हमारे पिटारे में यही है आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ कभी ना खत्म होने वाली एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, जी बिल्कुल। तो चलते हैं दोस्तों अगले गीत की ओर।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

तो दोस्तों बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन के तड़के का कार्यक्रम बस यहीं तक। अब से आप थोड़ी देर में सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर कार्यक्रम, अब से कुछ ही देर में।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में,
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
1: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोट

0: हरकतों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोतो, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं। ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है। प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
4: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।

0: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
2: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हो।
3: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
0: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
3: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
3: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
3: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
3: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
3: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है।
8: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे
9: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा।
10: गद्दी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए बेचारा।
11: सिद्धार्थ ने बताया होगा कैसे
8: देवदत्त का कर्म उनका है। कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
12: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
8: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
13: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
7: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
14: महाराज की जय हो,
15: महाराज की जय हो,
16: महाराज की जय हो।
17: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
18: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं चंचल।

0: शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल

0: गोला है।
1: विशाल गैसों का गोला।
2: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
3: जी सर।
4: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
2: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
3: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
4: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
2: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
3: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
2: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे? आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
4: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है, जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
2: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी, और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
4: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी, और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कुछ कुछ तो होगा ही, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अनजानी नहीं हूँ, क्योंकि आप सभी मुझे जानते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर आई हूँ कार्यक्रम छह लोग के सेगमेंट में, यानी कि नजारा फिल्मों का लेकर, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, कभी कभी सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि कुछ जगहें भी पहली नज़र में अनजानी लगती हैं, लेकिन जब वही जगह किसी फिल्म के गीत का हिस्सा बन जाती है तो वो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस जाती है। किसी बर्फीली वादी की खामोशी हो, या फिर किसी झील का सुकून, या किसी ऐतिहासिक इमारत की भव्यता, और बॉलीवुड के गीत इन नज़ारों को एक नई पहचान दे जाते हैं। तो दोस्तों, अगले एक घंटे में हम आपको ऐसे ही खूबसूरत फिल्मी लोकेशंस की सैर कराएंगे, जहां संगीत और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है, और हर गीत के साथ जानेंगे उस स्थान की खासियत और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो आइए इस सुरीले और खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। वैसे मैं शुरुआत कर चुकी हूँ फिल्म कुछ कुछ होता के इस गीत से, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

हल्की सी हवा और लहराती हुई चुनर भी किसी गीत की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। और जब संगीत के साथ प्रकृति के मनमोहक नजारे जुड़ जाते हैं तो वह गीत केवल सुना ही नहीं देता बल्कि आंखों के सामने एक सुंदर दृश्य भी रच देता है। जी बिल्कुल, ये गीत बिल्कुल इसी प्रकार से थी, जिसमें प्यार, चंचलता और खूबसूरत लोकेशंस का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। और ये गीत आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में। तो दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 7:17:55 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नजारा फिल्मों का अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

खेतों का ही नहीं बल्कि उन खूबसूरत जगहों का भी सफर है जिन्हें बॉलीवुड अपनी कहानियों की और धुनों के जरिए हमेशा के लिए यादगार बना दिया। फिलहाल तो सब ये गीत सुन रहे थे रॉकी और रानी की।

प्रेम कहानी से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में। और इस गीत में जिन सीनों का यानी कि खूबसूरत दृश्यों का जगहों का वर्णन देखने को मिलता है, सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है और वो सीधे दिल को छू जाती है। और दोस्तों, और इस गीत को जहाँ फिल्माया गया, उस गीत में, उस संगीत में और प्रकृति में मिलकर एक जादुई अनुभव रच देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में गीतों के साथ साथ खूबसूरत नज़ारों की इस अनोखी दुनिया का आनंद लेते हैं, क्योंकि जब आप गीतों को सुनेंगे तो वो गीत जिस जगह पर फिल्माए गए हैं उन जगहों के दृश्य अपने आप आंखों के सामने आ जाते हैं। और जब वो आंखों के सामने आ जाते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि हम उसी जगह पर रचे बसे हुए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल स्टूडियो में समय हो चला है 7:28 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नजारा फिल्मों का अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

दिलचस्प नहीं बल्कि नजरों से होती है। कभी एक नजर दिल की बात कह जाती है तो कभी शर्म और मुस्कान बहुत कुछ बयां कर देती है। इसी खूबसूरत एहसास को बड़े ही चुलबुले अंदाज में यह गीत पेश किया जाता है। और इस गीत में सिर्फ मधुर संगीत ही नहीं बल्कि रंग बिरंगे दृश्य, शानदार लोकेशंस और जीवन फिल्मांकन भी इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। जी हाँ, यही वजह है कि यह गीत सुनने के साथ साथ देखने में भी उतना ही आनंद देता है, क्योंकि इसमें आकर्षक सिनेमेटोग्राफी और कलाकार की शानदार प्रस्तुति इस गीत को और भी यादगार बना देती है। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 7:41 और 45 सेकेंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नजारा फिल्मों का।

यही समापन होता है। उम्मीद है कि आज की नज़ारा फिल्मों का में आपने उन शानदार लोकेशंस की सैर का आनंद लिया होगा जिन्होंने बॉलीवुड के गीतों को और भी यादगार बना दिया। संगीत और प्रकृति का यह अनोखा संगम हमेशा दिल को सुकून देता है और नई यादें छोड़ जाता है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात में फिर कुछ नए गीतों और नई फिल्मी नज़ारों

तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत, पर हाँ तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन यानी कि 107 FM रेनबो। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और खूबसूरत प्रस्तुति के साथ, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार और ठीक रात में 8:02 पर आपके साथ होंगे हमारे अगले प्रस्तोता यानी कि रोशन मुरारकम जो लेकर आ रहे हैं एक शानदार कार्यक्रम। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ यानी कि हमारे इस कार्यक्रम में छाया लोक के सेगमेंट में यानी कि दूसरे सेगमेंट में, बिल्कुल दूसरे सेगमेंट में आपकी मुलाकात होगी रोशन मुरारका से। तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत और हाँ दोस्तों जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ, तो यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए 107 FM रेनबो पर और साथ में ही सुनते रहिए कार्यक्रम नजारा फिल्मों का।

गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 एफएम रेनबो पर एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त रोशन मुरार का लेकल फरमाइशी कार्यक्रम छायालोक। तो आइए सुनते हैं दोस्तों पहले एक नगमा और उसके बाद फिर बातें होंगी आपसे 2213-1341 पर।

0: दोस्तों, वैसे बचने डरने की कोई बात नहीं है, कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: हाँ नमस्ते दादा।
0: नमस्ते नमस्ते,
1: हाँ मैं जुजार शाह दुखिनपल्ली से रिजु साजमल बोल रहा हूँ।
0: बोलिए भाई, कैसे हैं?
1: हाँ मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं तो बढ़िया हूँ भाई। बारिश वारिश हो रही है?
1: बहुत बारिश हो रही है।
0: ओ, बहुत बात, मतलब डर गए हैं आप कि नहीं, अब जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? बहुत ज्यादा
1: नहीं
0: बारिश हो रही है, मतलब आप नहीं चाहते कि और बारिश हो?
1: ओ नहीं, बारिश हो,
0: बारिश हो,
1: बहुत गर्मी
0: अच्छा
1: हो
0: अच्छा
1: रही है। बिल्कुल
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो क्या आपको लगता है कि बारिश से गर्मी कुछ कम हुई है?
1: कुछ कम नहीं हुई है, जब बारिश होती है तब थोड़ा कम लगता है, लेकिन बारिश थम जाने के बाद फिर
0: गर्मी
1: गर्मी
0: बढ़
1: बढ़ने
0: जाती
1: लगती है।
0: है। चलिए बताइए जनाब, क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैं जो गाना सुनना चाहता हूँ, अमानुष मूवी का गाना, किशोर
0: दिल ऐसा किसी ने
1: कुमार
0: मेरा
1: का,
0: तोड़ा।
1: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।
0: क्या बात है भाई, ऐसा क्या मतलब, बारिश ज्यादा होकर दिल टूट गया या और ज्यादा बारिश चाहिए या कोई और बात है? ऐसी
1: नहीं,
0: बात नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। चले दोस्तों, इनका दिल कैसे टूटा पता नहीं, लेकिन सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

आइए दोस्तों देखते हैं 2213-1341 पर कोई कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो भाई साहब चले गए हमारा दिल तोड़ के। चलिए कोई बात नहीं, सुनवाते हैं पसंद का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म आप तो ऐसे ना थे से।

चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2213-1341 पर कॉलर फ्रेंड क्या फरमाइश लेकर आए हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो

लगता है कुछ फरमाइश है, लेकिन हमारे कॉलर फ्रेंड आ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, उनकी पसंद थी फिल्म साजन से तुमसे मिलने। आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये गीत। फिलहाल एक और कॉलर फ्रेंड का इंतजार है, जब तक कोई आता है तब तक हमारी इन कॉलर फ्रेंड का, जो लेक टाउन से थी, उन कालिंदी से, उनकी पसंद का ये गीत।

वाह क्या बात है दोस्तों। अभी अभी आपने सुना दिल की गहराइयों को छू लेने वाला ये खूबसूरत नगमा। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। कभी कभी कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। ये गाना भी उन जज्बातों की कहानी कहता है जब किसी से मिलने की चाहत दिल की हर धड़कन में बस जाती है, जब हर रास्ता, हर मौसम, हर पल उसी एक शख्स की याद दिलाने लगता है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा खास इंसान है जिसे देखकर दिल आज भी थोड़ा ज्यादा धड़कता है, तो ये गाना यकीनन आपके दिल को छू लेगा, आपके दिल के बहुत करीब चलाएगा। यह मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम छायालोक। संगीत और यादों का यह खूबसूरत कारवा यूं ही चलता रहेगा, कहीं मत जाइए। फिलहाल नंबर डायल करना है आपको 2213-1341 और आना है अपनी पसंदीदा फरमाइश को लेकर। तब तक सुनिए ये नगमा।

0: हैं उनसे बातें कर लेते हैं कि क्या वो सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हाँ सर।
0: हेलो। हाँ जी नमस्कार बोलिए।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: बोलिए बोलिए कौन सा बोल रहे हैं
1: सर? लौकी का ही गाना है वो।
0: भाई साहब अपना नाम तो बताइए।
1: जी मेरा नाम प्रकाश शर्मा है, मैं रिश्ता से बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं प्रकाश जी?
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते। अरे आप क्या करते हैं ये बताइए।
1: जी मैं सर्विस करता हूँ।
0: सर्विस करते हैं तो ऑफिस से आकर चाय पानी हो गया?
1: हाँ सर अभी चाय मुड़ी खा के और बस अब घर जा रहा हूँ।
0: अच्छा चाय मुड़ी आलू चप
1: नहीं और बस अब घर जाके खाना खाएंगे सर।
0: अच्छा बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: जी मैं वो गाना सुनना चाह रहा था। हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए अब हो के जुदा, फिर मिले न मिले क्यों न चलो हम सदा के लिए। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।

0: चलिए दोस्तों, वक्त बहुत कम है और 2213-1341 पर कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: जी, नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: मेरा नाम है शुभोचित, मैं बिलगढ़िया से बात कर रहा हूँ।
0: बताइए जनाब, कैसे हैं?
1: आपसे पहली बार बात हो रही है, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ, बताइए।
1: और इतना अच्छा अच्छा गाना प्ले हो रहा है तो मुझे लगा कि एक बार मैं भी कॉल कर लूँ, एक बार मेरी गाने की फरमाइश अगर आप कर सके तो।
0: यस,
1: ये राम तेरी गंगा मैली का हुस्न पहाड़ों का, इसमें फिल्म में तो बहुत सारा गाना, सब गाने अच्छे हैं और मैं बहुत बार सुनता हूँ। मुझे एक्चुअली 80s, 90s, 70s, 80s, 90s, ये तीन दशक के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद तो याद नहीं रहता है गाना लिरिक्स वगैरह, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम लोग जो भी गाना सुनना चाहते वो हमेशा बजता ही रहता है, कभी कभी सिफारिश करने का जरूरत भी नहीं पड़ता।
0: देखिए एक्चुअली ये आप सुनने वालों का प्यार है ना, कि आप नए नए तरह तरह के पुराने हर दशक के गीत की फरमाइश करते हैं और हम आपके लिए ही सुनाते हैं क्योंकि आपके लिए ही हम हैं।
1: रेडियो का एक खास बात जो है, जो कितने साल पुराना जो कैसेट से रिकॉर्ड है, जितने स्टॉक है आकाशवाणी के पास कहीं नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है, तो ये तो हम लोग के लिए एक ट्रेजर है, एक
0: अच्छा
1: बहुत
0: लगता है,
1: सम्मान की बात है
0: जी। अच्छा लगता है, आप जैसे श्रोता आते हैं और ऑल इंडिया रेडियो की तारीफ करते हैं,
1: और आप, बहुत आप अच्छा लोग प्रेजेंटर्स जो है, रेडियो जॉकीज जो है, इतने अच्छे तरह से शो को लेके चलते हैं और हम लोग सुनते हैं आपके लिए भी।
0: चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, सुनवाते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा नगमा।

तो दोस्तों, सदाबहार गीतों की और आपकी फरमाइश को सुनाते हुए इस महफिल को अब यहीं विराम देने का समय आ गया है। आज हमने मिलकर उन अनमोल नगमों को सुना जिसकी आपने फरमाइश की। तो फिलहाल कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए और आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरारका को आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।